मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से इंस्पायर्ड संजय लीला बंसाली की फिल्म ऑफ द सेम नेम शिवम पाठक ऑन द वोकल्स। मेरे इश्क के हर मकाम में हर सुबह में हर शाम में एक रुतबा है एक शान है दोनों तुझ पे कुर्बान है एक दिल एक जान लीजिए बोथ योर्स एट योर मर्सी डू एज यू विल। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूसडे द 7th ऑफ जुलाई की सुबह शबनम साही के साथ।

0: वजीर का ये बेहद खूबसूरत ड्यूएट सोनू निगम श्रेया घोषाल तेरे बिन, इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूसडे की सुबह, 7 जुलाई की सुबह। सुना आपने जुलाई की सुबह, शबनम साही के साथ।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम।
0: अ हाउस फुल ऑफ केओस, अ गर्ल फुल ऑफ ड्रीम्स, वॉच अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ लव, फैमिली एंड इमोशंस। वॉच बरेली की बच्चन मंडे टू फ्राइडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी। The hit of the hour with Jaimin Foods. Make snack time even crunchier with Jaimin Grills. Lemon chili pillow, masala wheels, berry berry penne and so much more. Jaimin Foods, the ethnic taste of India. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा hit of the hour taken from मैं वापस आऊंगा तेरे पास में। इम्तियाज अली's film, this film, it didn't have the box office on its side when it opened, but gradually through word of mouth, a lot of people ended up watching it and liking it and even loving it. It has emerged as one of the most successful films of 2026 so far. He talks about the emotional cost of the partition of 1947. People who lived through that carnage, that nightmare. What were the memories that they carried in their hearts and virtually carried it to their graves? That is the story. Yeah.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।